0: तु यद् भवेत् तत्सर्वम् शम्यताम् देवा नारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व सा ईश्वरा। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निषन्मया दासोऽयमिति माम् मत्वा क्षमस्व सा ईश्वरा। अन्यथा शरणम् नास्ति त्वमेव शरणम् मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष सा ईश्वरा। हरिः ओम् तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु।
1: साईराम, हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड टू प्रशांति स्ट्रीम।
2: साईराम, यू वर लिसनिंग टू वेद जिज्ञासा, एन इंक्वायरी इनटू द वेदास। दिस इज अ प्रोग्राम वेयर मेंबर्स ऑफ द प्रशांति वेदम ग्रुप डेल्व डीपर इनटू द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेदिक मंत्रास। Today's episode was first featured as part of Thursday live programs aired on Asia Stream. Dear listener, you can email us your feedback as always to listener@ssmediacenter.org. You can also WhatsApp us your feedback to this number 9393258258. We'll continue the series same time next week. Thank you and Sai Ram.

गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम।

हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम है। सात घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में श्वेत कमल धारण किए हुए प्रचंड तेजस्वी कश्यप कुमार सूर्य को मैं प्रणाम करता हूं। लोहित वर्ण रथारूढ़ सर्वलोक पितामह महापापहारी सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूं। जो त्रिगुणमय ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप है, उन महापापहारी महान वीर सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूं। जो बढ़े हुए तेज के पुंज है और वायु तथा आकाश स्वरूप है, उन समस्त लोगों के अधिपति सूर्य को मैं प्रणाम करता हूं। जो दोपहरिया के पुष्प समान रक्तवर्ण और हार तथा कुंडलों से विभूषित है, उन एक चक्रधारी सूर्य देव को, जो त्रिगुणमय ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप है, उन महापापहारी महान वीर

महान तेज के प्रकाशक, जगत के कर्ता, महापापहारी उन सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। उन सूर्य देव को जो जगत के नायक है, ज्ञान विज्ञान तथा मोक्ष को भी देते हैं, साथ ही जो बड़े बड़े पापों को भी हर ले

विरले जाने। ये पंक्ति जिस विच सारे शब्द का केंद्री भाव है, भगत जी दसदे हन कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करके नाम सिमरदा है,